हम अब उनका कहना है कि उन्होंने हमले मंसूख कर दिए हैं और आला सतही ईरानी रहनुमाओं ने मुहाइदे की शराइत पर इत्तेफाक कर लिया है। ट्रंप ने जुमेरात को वाशिंगटन में सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने कहा, हमने अभी अभी ईरान के साथ जंग के तस्वीर का बेहतरीन समझौता किया है और हमें दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना होगी। हमें इसे अगले चंद दिनों में मुकम्मल कर लेना चाहिए। हम मुमकिन तौर पर शायद यूरोप में दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुहाइदे की मंजूरी दे दी है और उन्होंने मजीद कहा कि इस पर दस्तखत होने के बाद अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। तहम ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि ईरान ने बाजाबता तौर पर किसी मुहाइदे की तस्दीक नहीं की है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने गुज़श्ता दो महीनों में बारहा दावा किया है कि मुहाइदा होने के करीब है। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहाइदे की इबारत को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब।
0: कामायनी जी, आजकल लोग देखिए रोजमर्रा के जीवन में AI का बहुत उपयोग कर रहे हैं, क्या आप भी करती हैं?
1: हाँ, जब किसी तरह की जानकारी चाहिए होती है तो इंटरनेट पर खुद तरह तरह की वेबसाइट सर्च करने की बजाय आजकल मैं AI से ही पूछ लेती हूँ।
0: हाँ, ये तो ठीक है, इससे समय की बहुत बचत होती है और एक जगह सारी चीजें मिल जाती हैं।
1: जी जी।
0: वैसे जानकारी सर्च करने के अलावा और किस तरह से इस्तेमाल करती हैं?
1: बस ज्यादा नहीं।
0: अच्छा, क्या आपने कभी अपनी निजी जीवन की समस्याएं जैसे लोगों के साथ रिश्तों के बारे में AI से बात की है?
1: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया है। क्यों, क्या ऐसी निजी समस्याओं का इलाज भी AI के पास है?
0: नहीं, देखिए अभी देखिए जापान में एक ऐसी घटना घटी जिससे पता चला कि युवा पीढ़ी जो है वो इन चीजों के लिए भी AI से राय लेती है।
1: क्या है ये मामला, जरा विस्तार से बताएं।
0: देखिए हुआ यूँ कि बेटियों को लड़ता देखकर एक पिता ने उन्हें डांटा, तो उल्टा जवाब दिए जाने पर पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बेटी को जरा सा धक्का दे दिया। तो बेटी ने AI से पूछा कि पिता ने हाथ उठाया है तो वो क्या करे। AI ने कहा कि बाल परामर्श केंद्र को फोन करो और साथ में वहाँ का फोन नंबर भी दे दिया।
1: अच्छा, ऐसा भी होता है?
0: हाँ, और बेटी ने फोन किया और परामर्श केंद्र ने पुलिस को फोन कर दिया।
1: ओहो।
0: और कुछ ही मिनटों में पुलिस घर आ गई और पिता को गिरफ्तार कर लिया।
1: अरे, इसने तो बहुत ही बड़ी घटना का रूप ले लिया।
0: हाँ, वही तो। बाद में बेटी को पछतावा तो हुआ कि AI के कहे अनुसार जो कदम उसने उठाया वो कितनी बड़ी घटना में बदल सकता है।
1: यानी जापान में युवा ऐसी निजी समस्याओं के लिए भी AI से मशवरा कर रहे हैं, काफी हैरान कर देने वाली घटना है, है
0: ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पहले लगता था ना कि AI बस बड़े बड़े कामों के लिए है, लेकिन अब इसने हमारे जीवन में इस तरह से प्रवेश कर लिया है कि अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही लग रहा है।
1: सही कहा आपने। और बहरहाल अब चलते हैं श्रोताओं के पत्रों की ओर जो पक्का बिना AI की सहायता से लिखे गए होंगे।
0: जी जी।
1: तो सबसे पहले फेसबुक की टिप्पणियां ले लेते हैं।
0: जरूर।
1: राजेश जापानी ने लिखा है कि NHK वर्ल्ड हिंदी के समाचार जो जापान समय से रात 11:30 बजे प्रसारित होते

0: हैं वो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होता है, किंतु आप लोग रात 9 बजे बोलते हैं। त्रुटि सुधार की आवश्यकता है। जापान की तरह भारत में मौसम के हिसाब से समय 1 घंटे आगे नहीं बढ़ता।
1: राजेश जी, आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। दरअसल हमारा प्रसारण कई जगहों पर होता है, इंटरनेट तो है ही, साथ में शॉर्टवेव पर भी और अलग अलग समय पर। तो अगर आप देखिए, पहला हमारा जो प्रसारण होता है वो रात 11:30 बजे होता है और वो सैटेलाइट पर होता है, और भारत के अनुसार ये हुआ रात 8 बजे। 9 बजे वाला शॉर्टवेव का प्रसारण है। तो इस प्रकार कई प्रकार के प्रसारण अलग अलग मीडिया पर होते रहते हैं और इंटरनेट पर भी आप साथ साथ सुन सकते हैं।
0: जी, अब दूसरी टिप्पणी है उमेश कुमार शर्मा जी की। लिखते हैं, रेडियो जापान हिंदी सर्विस से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। ये उस समय से है जब आप रेडियो पर 11,840 किलो हर्ट्स पर अपना प्रसारण सुनाते थे। इसके काफ़ी पश्चात ही आप इंटरनेट पर आ गए। अब भी समय मिलने पर आपके कार्यक्रम इस माध्यम से सुनने का प्रयास करता हूँ।
1: उमेश जी, इतने लंबे अरसे से जुड़े रहने के लिए आभार। जब भी आपको मौका मिले जरूर हमारे प्रसारण देखें और सुने। साथ ही अगर कोई सामग्री पसंद आए तो उसके बारे में अपनी राय भी अवश्य हम तक पहुंचाएं।
0: उमेश जी ने एक समाचार, जापान में जून से बढ़ सकती है 1,000 से अधिक खाद्य पदार्थों की कीमतें पर अपनी टिप्पणी भेजी है।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध के परिणाम स्वरूप ज्यादातर देशों में विभिन्न सामानों की कीमतों में तेजी हो रही है, जो स्वाभाविक ही है क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप तेल आयात प्रभावित हो गया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है।
1: जी हाँ। और अब देखिए, केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का पत्र है। लिखते हैं, दिनांक 24 मई को चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत आओ पकाएं जापानी खाना में लगभग 1 दशक पूर्व प्रसारित सोयाबीन बर्गर की रेसिपी को आपने जिस रोचक और जीवंत अंदाज में प्रस्तुत किया वो आज भी पूरी तरह ताजगी से भरपूर लगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि अंडे को छोड़कर इसमें प्रयुक्त अधिकांश सामग्री शाकाहारी है, इसलिए हम जैसे शुद्ध शाकाहारी लोग भी इसके स्वाद का आनंद लेने की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि इसे बनाने की प्रक्रिया कुछ श्रम साध्य अवश्य प्रतीत हुई, फिर भी इसकी विशिष्टता और पौष्टिकता इसे आकर्षक बनाती है। अब देखना यह है कि घर में इसकी प्रयोगशाला कब सजती है। यदि धर्मपत्नी की सहमति मिल गई तो इस जापानी व्यंजन को घर पर बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। इस रोचक एवं उपयोगी प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद।
0: सुरेश जी, जापानी भोजन की यही विशेषता है कि सभी व्यंजन बहुत पौष्टिक होते हैं, लेकिन भारत के हिसाब से इसमें शाकाहारी व्यंजन कम है, या है तो शायद बनाने की सामग्री वहाँ ना मिल पाए।
1: ये तो है, लेकिन कमानी जी, मुझे लगता है कि सोयाबीन बर्गर में अंडे का इस्तेमाल केवल सारी सामग्री को जोड़ने के लिए किया गया है। अगर अंडा नहीं डालना है तो ब्रेड का चूरा मिला सकते हैं, जो सामग्री को एक साथ जोड़ने और टिक्की का आकार देने में कारगर रहेगा। तो सुरेश जी, अगर ऐसा कर लें तो शायद आपकी पत्नी को भी कोई एतराज ना हो।
0: जी, वैसे आपने सही कहा कि बनाने में मेहनत तो लगेगी।
1: हाँ, मेहनत वाला है ये।
0: तो अगली बार कोई आसान सी विधि लेकर आते हैं ताकि आप भी आसानी से हाथ आजमा सकें।
1: जी हाँ।
0: और देखिए, ये अगला पत्र है राम कुमार नीरज जी का।
1: अच्छा जी, बताइए ना, ये क्या फरमा रहे हैं।
0: लिखते हैं, हिंदी सेवा के वेबसाइट पर ऊर्जा सब्सिडी पर 500 अरब येन खर्च कर सकती है सरकार। समाचार पढ़कर पत्र लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाया।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये केवल ऊर्जा सब्सिडी की एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि ये उस मानवीय चिंता को भी सामने लाती है जो किसी भी जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का असर दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ रहा है। ऐसे समय में जापान सरकार का राहत देने के लिए आगे आना एक संवेदनशील और व्यावहारिक कदम माना जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि जापान सरकार $3 अरब से अधिक खर्च कर बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित رکھنا چاہتی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے عام لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش بھی دکھائی دیتی ہے۔ بجلی اور گیس جیسی مول بھوت ضرورتیں مہنگی ہونے پر گھر کا بجٹ پوری طرح پربھاوت ہوتا ہے۔ ایسے میں سرکار دوارا سبسڈی دے کر راحت پہنچانے کی یوجنا مانویہ درشٹی سے مہتوپورن ہے۔ پچھلے ورش کی تلنا میں اس بار ادھک سبسڈی دینے کی یوجنا یہ سنکیت دیتی ہے کہ سرکار حالات کی گمبھیرتا کو سمجھ رہی ہے۔
1: رام کمار جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب چوطرفہ مہنگائی کا عالم ہو تو اس طرح کی سرکاری سہایتا سے بڑا سکون ملتا ہے۔
0: آگے لکھتے ہیں کہ حالانکہ اس یوجنا کو لے کر کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں۔
1: اچھا،
0: ہاں، اتنی بڑی راشی خرچ کرنا کسی بھی دیش کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بھوشیہ میں اس کا اثر سرکاری وتیہ سنتولن پر پڑ سکتا ہے۔ پورک بجٹ کی سمبھاونا پر چرچا یہ بتاتی ہے کہ سرکار کو اترکت آرتھک دباؤ جھیلنا پڑ سکتا ہے۔
1: جی،
0: لیکن اس کے باوجود یدی سرکار جنتا کی راحت کو پراتھمکتا دیتی ہے تو یہ ایک لوکتانترک اور سنویدنشیل شاسن ویوستھا کا سنکیت مانا جائے گا۔ اس رپورٹ کو پڑھتے سمے ایک اور مہتوپورن بات محسوس ہوتی ہے کہ دنیا آج کتنی آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ پشچم ایشیا میں پیدا ہوا سنکٹ ہزاروں کلومیٹر دور جاپان کے گھروں کی بجلی اور گیس کی قیمتوں کو پربھاوت کر رہا ہے۔ یہ ویشوک ارتھ ویوستھا کی جٹلتا اور دیشوں کی پرسپر نربھرتا کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
1: رام کمار جی، آپ نے بہت ہی سٹیک وشلیشن کیا ہے، اور یہاں پر میری ویکتیگت رائے یہ ہے کہ سرکار کا کام ہی جنتا کے لیے کام کرنا ہے۔
0: جی،
1: اسی لیے انہیں چنا گیا ہے۔ دیش کی باگ ڈور سنبھالنے کا مطلب دیش کو ہر آندھی طوفان سے بچا کر کنارے پر لے جانا ہے، اور ایسے پریاس ہر دیش میں ہونے چاہیے، تبھی سب کا جیون سدھر سکتا ہے، ہے نا؟
0: جی جی جی، صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیے وائلا جی، اب وقت ہو رہا ہے ہماری فریکوینسی کی جانکاری دینے کا، تو نوٹ کر لیجئے ہماری فریکوینسی۔
2: یہ ہے این ایچ کے ورلڈ جاپان کی ہندی سیوا۔ بھارت میں ہمارے پرسارن کا آنند آپ لے سکتے ہیں رات 9 بجے سے شارٹ ویو 11655 کلو ہرٹز پر۔ ہمارا سجیو پرسارن nhk.jp/hindi پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ سنتے رہیں این ایچ کے ورلڈ جاپان۔
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। तो बढ़ाते हैं अब पत्रों का सिलसिला।
1: बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो देखिए, ये अगला पत्र है एसबी शर्मा जी का।
0: क्या लिखते हैं?
1: लिखते हैं, 24 मई का चेरी के देश से कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। आपके प्रसारण के माध्यम से रेडियो जापान हिंदी के श्रोताओं के विचार सुनने को मिले। कार्यक्रम के अगले भाग आओ पकाएं जापानी खाना में सोयाबीन बर्गर बनाने की विधि विस्तार पूर्वक सुनी, पर पूरी विधि सुनने में ऐसा लगा कि इस रेसिपी का नाम सोयाबीन बर्गर ना होकर अंडा बर्गर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इस रेसिपी में सोयाबीन से ज्यादा तो अंडा लगाया गया है, पर जो भी हो, बर्गर स्वादिष्ट बना होगा।
0: शर्मा जी की टिप्पणी भी लाजवाब रही
1: जी।
0: इस पर तो कोई जवाब ही नहीं सोच रहा है। कार्यक्रम सुनने के लिए शुक्रिया।
1: जी हाँ। और कमाईनी जी, अभी देखिए, हमने उमेश जी की फेसबुक की टिप्पणियां ली थी, और उसमें से एक और है जिसमें इन्होंने लिखा है कि शायद आप मुझे भूल गई हैं, किंतु मैं नारनौल हरियाणा में आपको सदा याद करता हूँ, क्योंकि मैं रेडियो जापान को रेडियो पर सुनता था, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपने कार्यक्रम सुनाने लगे तो आपसे संपर्क नहीं कर पाया।
0: अच्छा, हाँ, एक दिन सुरेश जी ने पूछा था ना कि क्या ये वही उमेश जी हैं, हरियाणा वाले?
1: हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने कहा था ना नारनौल हरियाणा के हैं उमेश जी। जी जी जी, मुझे याद आया। हाँ,
0: तो आज पुष्टि हो ही गई कि ये वही उमेश जी हैं।
1: जी जी जी, बिल्कुल वही उमेश जी हैं। और ये आगे लिखते हैं कि जापानी व्यंजन बनाने की रेसिपी आपने जो शुरू की, उनका स्वाद लेने का मन करता रहा है, लेकिन चेरी के देश से कार्यक्रम में मिवाको कोएजुका जी को सुनने का जो आनंद मिलता था वो काफी अच्छा लगता था। एक जापानी होने के बावजूद उनका श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला अंदाज मुझे अब तक याद है। आपके द्वारा समय समय पर भेजे गए कार्ड्स मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है, और इनके द्वारा रेडियो जापान हिंदी सर्विस की यादें ताजा होती हैं।
0: अरे वाह, मिवाको जी की तो बात ही अलग थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनका अंदाज, उनकी शैली बेजोड़ थी। हम भी उन्हें याद करते हैं
1: जी।
0: बहुत ही प्यारी व्यक्तित्व की धनी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज भी पसंद आ रहा होगा।
1: हाँ, ये भी आप अगली बार हमें बताइए
0: जी,
1: कि हमारा अंदाज पसंद आ रहा है कि नहीं। और देखिए, सोयाबीन बर्गर के बारे में तो देखिए इन्होंने भी टिप्पणी की है। और अभी हमने पहले कहा था कि जापानी भोजन वाकई बहुत ही पौष्टिक होता है। हर मौसम की अलग अलग खाद्य सामग्री से इस तरह से व्यंजन बनाए जाते हैं कि मौसम की अनुभूति हो।
0: वायला जी, आपने अच्छा याद दिलाया। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए वरदान हैं।
1: जी हाँ, ये तो सच है। और कहते भी है ना कि हर बीमारी का इलाज प्रकृति में ही होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है।
0: जी, जी, जी।
1: और भारत में तो आपको पता ही है कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से हम बचपन से अपनी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात पाते आए हैं। आप किसी भी भारतीय से बात कर लीजिए और अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी समस्या बता दी तो बिना समय गाए फौरन वो आपको कोई प्राकृतिक या कोई घरेलू नुस्खा आपको बता देंगे, हल बता देंगे उसका।
0: सही कहा आपने। पहले के जमाने में लोग इसके बारे में कितना जानते थे, लेकिन आजकल ये सब लुप्त होता जा रहा है। फिर भी कई लोग प्रकृति के वरदानों के हिसाब से चल रहे हैं।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन ये बताइए कि अचानक क्या हो गया आपको कि आप इसके बारे में बात करने लगी? कोई समस्या है तो बताइए, फिर उसका निजात भी ढूंढ लिया जाए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले मैं हमारी वेबसाइट पर प्रकृति का वरदान श्रृंखला की कुछ कड़ियां देख रही थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, देख रही थी, जिनमें जापान की उन वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के बारे में बताया जा रहा था जिनका सेवन सदियों से होता आया है और आज भी हो रहा है।
1: अच्छा, जापान में भी इस तरह का है कुछ क्या?
0: हाँ हाँ, एक कड़ी है, वसंत जड़ी बूटियों का ज्ञान। उसमें आप जान सकते हैं कि किस तरह सदियों पहले एक कारोबारी ने औषधीय जड़ी बूटियों वाले उद्यान की शुरुआत की।
1: अच्छा,
0: उनका उद्यान समझ लीजिए ऐसी वनस्पतियों का खजाना है।
1: अरे वाह, तो ये तो भाई देखने लायक वीडियो है, मैं जरूर देखूंगी।
0: हाँ, इस कार्यक्रम में जान सकते हैं उन लोगों के बारे में इन जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अपने पूर्वजों की दिखाई राह का अनुसरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसमें रुचि हो तो जरूर देखें।
1: जी हाँ, और मैं भी देखूंगी और मैं भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वो राज हैं जापानी वनस्पतियों के जो हमें भी जानने चाहिए।
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो कमाईनी जी, आज क्यों ना कार्यक्रम के अंत में एक गीत सुन लिया जाए। तो ये गीत है डांस हॉल और इसे गाया है मिसेस ग्रीन एप्पल ग्रुप ने। और ये जो ग्रुप है इस समय जापान में काफी लोकप्रिय है।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK World जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: कामायनी जी, आजकल लोग देखिए रोजमर्रा के जीवन में AI का बहुत उपयोग कर रहे हैं, क्या आप भी करती हैं?
1: हाँ, जब किसी तरह की जानकारी चाहिए होती है तो इंटरनेट पर खुद तरह तरह की वेबसाइट सर्च करने की बजाय आजकल मैं AI से ही पूछ लेती हूँ।
0: हाँ, ये तो ठीक है, इससे समय की बहुत बचत होती है और एक जगह सारी चीजें मिल जाती हैं।
1: जी जी।
0: वैसे जानकारी सर्च करने के अलावा और किस तरह से इस्तेमाल करती हैं?
1: बस ज्यादा नहीं।
0: अच्छा, क्या आपने कभी अपनी निजी जीवन की समस्याएं जैसे लोगों के साथ रिश्तों के बारे में AI से बात की है?
1: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया है। क्यों, क्या ऐसी निजी समस्याओं का इलाज भी AI के पास है?
0: नहीं, देखिए अभी देखिए जापान में एक ऐसी घटना घटी जिससे पता चला कि युवा पीढ़ी जो है वो इन चीजों के लिए भी AI से राय लेती है।
1: क्या है ये मामला, जरा विस्तार से बताएं।
0: देखिए हुआ यूँ कि बेटियों को लड़ता देखकर एक पिता ने उन्हें डांटा, तो उल्टा जवाब दिए जाने पर पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बेटी को जरा सा धक्का दे दिया। तो बेटी ने AI से पूछा कि पिता ने हाथ उठाया है तो वो क्या करे। AI ने कहा कि बाल परामर्श केंद्र को फोन करो और साथ में वहाँ का फोन नंबर भी दे दिया।
1: अच्छा, ऐसा भी होता है?
0: हाँ, और बेटी ने फोन किया और परामर्श केंद्र ने पुलिस को फोन कर दिया।
1: ओहो।
0: और कुछ ही मिनटों में पुलिस घर आ गई और पिता को गिरफ्तार कर लिया।
1: अरे, इसने तो बहुत ही बड़ी घटना का रूप ले लिया।
0: हाँ, वही तो। बाद में बेटी को पछतावा तो हुआ कि AI के कहे अनुसार जो कदम उसने उठाया वो कितनी बड़ी घटना में बदल सकता है।
1: यानी जापान में युवा ऐसी निजी समस्याओं के लिए भी AI से मशवरा कर रहे हैं, काफी हैरान कर देने वाली घटना है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पहले लगता था ना कि AI बस बड़े बड़े कामों के लिए है, लेकिन अब इसने हमारे जीवन में इस तरह से प्रवेश कर लिया है कि अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही लग रहा है।
1: सही कहा आपने। और बहरहाल अब चलते हैं श्रोताओं के पत्रों की ओर जो पक्का बिना AI की सहायता से लिखे गए होंगे।
0: जी जी।
1: तो सबसे पहले फेसबुक की टिप्पणियां ले लेते हैं।
0: जरूर।
1: राजेश जापानी ने लिखा है कि NHK वर्ल्ड हिंदी के समाचार जो जापान समय से रात 11:30 बजे प्रसारित होते हैं वो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होता है, किंतु आप लोग रात 9 बजे बोलते हैं। त्रुटि सुधार की आवश्यकता है। जापान की तरह भारत में मौसम के हिसाब से समय 1 घंटे आगे नहीं बढ़ता।
0: राजेश जी, आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। दरअसल हमारा प्रसारण कई जगहों पर होता है, इंटरनेट तो है ही, साथ में शॉर्टवेव पर भी और अलग अलग समय पर। तो अगर आप देखिए, पहला हमारा जो प्रसारण होता है वो रात 11:30 बजे होता है और वो सैटेलाइट पर होता है, और भारत के अनुसार ये हुआ रात 8 बजे। 9 बजे वाला शॉर्टवेव का प्रसारण है। तो इस प्रकार कई प्रकार के प्रसारण अलग अलग मीडिया पर होते रहते हैं और इंटरनेट पर भी आप साथ साथ सुन सकते हैं।
1: जी, अब दूसरी टिप्पणी है उमेश कुमार शर्मा जी की। लिखते हैं, रेडियो जापान हिंदी सर्विस से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। ये उस समय से है जब आप रेडियो पर 11,840 किलोहर्ट्ज पर अपना प्रसारण सुनाते थे। इसके काफी पश्चात ही आप इंटरनेट पर आ गए। अब भी समय मिलने पर आपके कार्यक्रम इस माध्यम से सुनने का प्रयास करता हूँ।
0: उमेश जी, इतने लंबे अरसे से जुड़े रहने के लिए आभार। जब भी आपको मौका मिले जरूर हमारे प्रसारण देखें और सुने। साथ ही अगर कोई सामग्री पसंद आए तो उसके बारे में अपनी राय भी अवश्य हम तक पहुंचाएं।
1: उमेश जी ने एक समाचार, जापान में जून से बढ़ सकती है 1,000 से अधिक खाद्य पदार्थों की कीमतें पर अपनी टिप्पणी भेजी है।
0: अच्छा।
1: हाँ, कि वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध के परिणाम स्वरूप ज्यादातर देशों में विभिन्न सामानों की कीमतों में तेजी हो रही है, जो स्वाभाविक ही है क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप तेल आयात प्रभावित हो गया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है।
0: जी हाँ, और अब देखिए केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का पत्र है। लिखते हैं, दिनांक 24 मई को चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत आओ पकाएं जापानी खाना में लगभग एक दशक पूर्व प्रसारित सोयाबीन बर्गर की रेसिपी को आपने जिस रोचक और जीवंत अंदाज में प्रस्तुत किया वो आज भी पूरी तरह ताजगी से भरपूर लगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि अंडे को छोड़कर इसमें प्रयुक्त अधिकांश सामग्री शाकाहारी है, इसलिए हम जैसे शुद्ध शाकाहारी लोग भी इसके स्वाद का आनंद लेने की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि इसे बनाने की प्रक्रिया कुछ श्रम साध्य अवश्य प्रतीत हुई, फिर भी इसकी विशिष्टता और पौष्टिकता इसे आकर्षक बनाती है। अब देखना यह है कि घर में इसकी प्रयोगशाला कब सजती है। यदि धर्मपत्नी की सहमति मिल गई तो इस जापानी व्यंजन को घर पर बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। इस रोचक एवं उपयोगी प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद।
1: सुरेश जी, जापानी भोजन की यही विशेषता है कि सभी व्यंजन बहुत पौष्टिक होते हैं, लेकिन भारत के हिसाब से इसमें शाकाहारी व्यंजन कम है, या हैं तो शायद बनाने की सामग्री वहाँ ना मिल पाए।
0: ये तो है, लेकिन कमाली जी मुझे लगता है कि सोयाबीन बर्गर में अंडे का इस्तेमाल केवल सारी सामग्री को जोड़ने के लिए किया गया है। अगर अंडा नहीं डालना है तो ब्रेड का चूरा मिला सकते हैं, जो सामग्री को एक साथ जोड़ने और टिक्की का आकार देने में कारगर रहेगा। तो सुरेश जी, अगर ऐसा कर लें तो शायद आपकी पत्नी को भी कोई एतराज ना हो।
1: जी, वैसे आपने सही कहा कि बनाने में मेहनत तो लगेगी।
0: हाँ, मेहनत वाला है ये।
1: तो अगली बार कोई आसान सी विधि लेकर आते हैं ताकि आप भी आसानी से हाथ आजमा सकें।
0: जी हाँ।
1: और देखिए, ये अगला पत्र है राम कुमार नीरज जी का।
0: अच्छा जी, बताइए ना, ये क्या फरमा रहे हैं।
1: लिखते हैं, हिंदी सेवा के वेबसाइट पर ऊर्जा सब्सिडी पर 500 अरब येन खर्च कर सकती है सरकार। समाचार पढ़कर पत्र लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाया।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये केवल ऊर्जा सब्सिडी की एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि ये उस मानवीय चिंता को भी सामने लाती है जो किसी भी जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का असर दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ रहा है। ऐसे समय में जापान सरकार का राहत देने के लिए आगे आना एक संवेदनशील और व्यावहारिक कदम माना जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि जापान सरकार 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखना चाहती है। इस फैसले के पीछे आम लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश भी दिखाई देती है। बिजली और गैस जैसी मूलभूत जरूरतें महंगी होने पर घर का बजट पूरी तरह प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार द्वारा सब्सिडी देकर राहत पहुंचाने की योजना मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक सब्सिडी देने की योजना ये संकेत देती है कि सरकार हालात की गंभीरता को समझ रही है।
0: राम कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब चौतरफा महंगाई का आलम हो तो इस तरह की सरकारी सहायता से बड़ा सुकून मिलता है।
1: आगे लिखते हैं कि हालांकि इस योजना को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, इतनी बड़ी राशि खर्च करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। भविष्य में इसका असर सरकारी वित्तीय संतुलन पर पड़ सकता है। पूरक बजट की संभावना पर चर्चा ये बताती है कि सरकार को अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है।
0: जी।
1: लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार जनता की राहत को प्राथमिकता देती है तो ये एक लोकतांत्रिक और संवेदनशील शासन व्यवस्था का संकेत माना जाएगा। इस रिपोर्ट को पढ़ते समय एक और महत्वपूर्ण बात महसूस होती है कि दुनिया आज कितनी आपस में जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में पैदा हुआ संकट हजारों किलोमीटर दूर जापान के घरों की बिजली और गैस की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलता और देशों की परस्पर निर्भरता को भी उजागर करता है।
0: राम कुमार जी, आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है, और यहाँ पर मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सरकार का काम ही जनता के लिए काम करना है।
1: जी।
0: इसीलिए उन्हें चुना गया है। देश की बागडोर संभालने का मतलब देश को हर आंधी तूफान से बचाकर किनारे पर ले जाना है, और ऐसे प्रयास हर देश में होने चाहिए, तभी सबका जीवन सुधर सकता है ना।
1: जी जी जी, सही कहा आपने। और देखिए वायला जी, अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। तो बढ़ाते हैं अब पत्रों का सिलसिला।
0: बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो देखिए, ये अगला पत्र है SB शर्मा जी का।
1: क्या लिखते हैं?
0: लिखते हैं, 24 मई का चेरी के देश से कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। आपके प्रसारण के माध्यम से रेडियो जापान हिंदी के श्रोताओं के विचार सुनने को मिले। कार्यक्रम के अगले भाग आओ पकाएं जापानी खाना में सोयाबीन बर्गर बनाने की विधि विस्तार पूर्वक सुनी, पर पूरी विधि सुनने में ऐसा लगा कि इस रेसिपी का नाम सोयाबीन बर्गर ना होकर अंडा बर्गर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इस रेसिपी में सोयाबीन से ज्यादा तो अंडा लगाया गया है, पर जो भी हो बर्गर स्वादिष्ट बना होगा।
1: शर्मा जी की टिप्पणी भी लाजवाब रही
0: जी।
1: इस पर तो कोई जवाब ही नहीं सोच रहा है। कार्यक्रम सुनने के लिए शुक्रिया।
0: जी हाँ, और कमानी जी, अभी देखिए हमने उमेश जी की फेसबुक की टिप्पणियां ली थी, और उसमें से एक और है जिसमें इन्होंने लिखा है कि शायद आप मुझे भूल गई हैं, किंतु मैं नारनौल हरियाणा में आपको सदा याद करता हूँ, क्योंकि मैं रेडियो जापान को रेडियो पर सुनता था, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपने कार्यक्रम सुनाने लगे तो आपसे संपर्क नहीं कर पाया।
1: अच्छा हाँ, एक दिन सुरेश जी ने पूछा था ना कि क्या ये वही उमेश जी हैं हरियाणा वाले।
0: हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने कहा था ना नारनौल हरियाणा के हैं उमेश जी। जी जी जी, मुझे याद आया। हाँ,
1: तो आज पुष्टि हो ही गई कि ये वही उमेश जी हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल वही उमेश जी हैं। और ये आगे लिखते हैं कि जापानी व्यंजन बनाने की रेसिपी आपने जो शुरू की उनका स्वाद लेने का मन करता रहा है, लेकिन चेरी के देश से कार्यक्रम में मिवाको कोएजुका जी को सुनने का जो आनंद मिलता था वो काफी अच्छा लगता था। एक जापानी होने के बावजूद उनका श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला अंदाज मुझे अब तक याद है। आपके द्वारा समय समय पर भेजे गए कार्ड्स मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है, और इनके द्वारा रेडियो जापान हिंदी सर्विस की यादें ताजा होती हैं।
1: अरे वाह, मिवाको जी की तो बात ही अलग थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनका अंदाज, उनकी शैली बेजोड़ थी। हम भी उन्हें याद करते हैं
0: जी।
1: बहुत ही प्यारी व्यक्तित्व की धनी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज भी पसंद आ रहा होगा।
0: हाँ, ये भी आप अगली बार हमें बताइए
1: जी,
0: कि हमारा अंदाज पसंद आ रहा है कि नहीं। और देखिए, सोयाबीन बर्गर के बारे में तो देखिए इन्होंने भी टिप्पणी की है, और अभी हमने पहले कहा था कि जापानी भोजन वाकई बहुत ही पौष्टिक होता है। हर मौसम की अलग अलग खाद्य सामग्री से इस तरह से व्यंजन बनाए जाते हैं कि मौसम की अनुभूति हो।
1: वायला जी, आपने अच्छा याद दिलाया। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए वरदान हैं।
0: जी हाँ, ये तो सच है, और कहते भी है ना कि हर बीमारी का इलाज प्रकृति में ही होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है।
1: जी, जी।
0: और भारत में तो आपको पता ही है कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से हम बचपन से अपनी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से

0: निजात पाते आए हैं। आप किसी भी भारतीय से बात कर लीजिए और अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी समस्या बता दी तो बिना समय गाए फौरन वो आपको कोई प्राकृतिक या कोई घरेलू नुस्खा आपको बता देंगे, हल बता देंगे उसका।
1: सही कहा आपने। पहले के जमाने में लोग इसके बारे में कितना जानते थे, लेकिन आजकल ये सब लुप्त होता जा रहा है। फिर भी कई लोग प्रकृति के वरदानों के हिसाब से चल रहे हैं।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये बताइए कि अचानक क्या हो गया आपको कि आप इसके बारे में बात करने लगी? कोई समस्या है तो बताइए, फिर उसका निजात भी ढूंढ लिया जाए।
1: नहीं, दरअसल कुछ दिन पहले मैं हमारी वेबसाइट पर प्रकृति का वरदान श्रृंखला की कुछ कड़ियां देख रही थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, देख रही थी, जिनमें जापान की उन वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के बारे में बताया जा रहा था जिनका सेवन सदियों से होता आया है और आज भी हो रहा है।
0: अच्छा, जापान में भी इस तरह का है कुछ क्या?
1: हाँ, एक कड़ी है वसंत जड़ी बूटियों का ज्ञान। उसमें आप जान सकते हैं कि किस तरह सदियों पहले एक कारोबारी ने औषधीय जड़ी बूटियों वाले उद्यान की शुरुआत की।
0: अच्छा।
1: उनका उद्यान समझ लीजिए ऐसे वनस्पतियों का खजाना है।
0: अरे वाह, तो ये तो भाई देखने लायक वीडियो है, मैं जरूर देखूंगी।
1: हाँ, इस कार्यक्रम में जान सकते हैं उन लोगों के बारे में इन जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अपने पूर्वजों की दिखाई राह का अनुसरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसमें रुचि हो तो जरूर देखें।
0: जी हाँ, और मैं भी देखूंगी और मैं भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वो राज हैं जापानी वनस्पतियों के जो हमें भी जानने चाहिए।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो कमाईनी जी, आज क्यों ना कार्यक्रम के अंत में एक गीत सुन लिया जाए। तो ये गीत है डांस हॉल और इसे गाया है मिसेस ग्रीन एप्पल ग्रुप ने, और ये जो ग्रुप है इस समय जापान में काफी लोकप्रिय है।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला खवानों को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जी सामेईन, कहिए कैसे हैं आप?
1: उम्मीद है सब मज़े में होंगे। ईद उल अज़हा थी, अगरचे अब तकरीबन 10-12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सब सामीन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक और फरीज़ हज अदा करने वाले तमाम असहाब को भी दिली मुबारकबाद।
0: बकरीद कुर्बानी का गोश्त बनाने, खाने और बांटने का त्यौहार है। वैसे तो दुनिया के किसी खत्ते में कहीं भी कोई भी रिवायती त्यौहार हो, वो रिवायती खानों के बगैर नामुकम्मल रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर बकरीद का तस्वुर ही खुर्दनोश से जुड़ा है।
2: सूफिया, जापानी सकाफत के खाने पकाने से वाबस्ता एक पहलू का जिक्र करूं?
1: खाने पीने के जिक्र से ही तखयल में जायकेदार खाने आने लगे।
0: मुंह में पानी तो नहीं आया ना, क्योंकि वसीमा कोई डिश तो लाई नहीं है, सिर्फ जिक्र पर ही तरखा रही हैं। चलिए इस खास पहलू का जिक्र कर ही डालिए आप।
2: अरे नहीं, अब लाऊंगी, आइंदा जरूर लाऊंगी। वैसे सामीन आपको बताते चलें कि जापान में हर साल जून का महीना गजाइत से मुतलिक आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तस किया गया है। इसकी मखसूस इस्तिलाह है शोकु इकू।
0: शोकु इकू में शोकु से मुराद खाना है और इकू आगाही को कहते हैं।
2: और इस शोकु इकू से मुराद लोगों को, खसूसन बच्चों को खुराक मुंतखब करने, गजाइत के लिहाज से मुतवाजन खाने और खुराक का ज़ियार रोकने की आगही देना है। सामिन, यह लफ्ज़ जापान में 2005 में खुराक की तालीम के बुनियादी कानून के नफाज के साथ आम हुआ।
1: खाने पीने की सेहतमंद आदात तवाना मुआशरे की बुनियादी इकाई हैं। पाकुहिंद में दस्तरखान के आदाब पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन इसके लिए खास तौर पर कानून साजी की जरूरत क्यों पड़ी?
0: खलील साहब, पहले जमाने में जापान में भी ऐसे ही था। खाने के आदाब घराने से, रोजमर्रा की तरबियत से जुड़े हुए थे। तहम सुना है कि 20वीं सदी के बाद जापान की तेज माशी तरक्की के दौर में तर्ज जिंदगी में नुमाया तब्दीली आने से खुराक से मुतालिक मसाइल सामने आए, जिनमें अकेले अहल खाना के साथ खाने के बजाय अकेले खाने और बाहर खाने की शरह में इजाफा शामिल है।
2: अरे हाँ, दस्तरखान पे खाने की वाकई कमी हुई है। और मेरी एक हमसाई बताती हैं कि नौ उम्र बच्चे, ऐसे बच्चे जो स्कूलों में 9वीं 10वीं में हैं और वो स्कूल के बाद और कोई ना कोई पढ़ाई करते हैं, वो अपना खाना या रात गए खाने की खरीदारी कन्वीनियंस स्टोरों से खरीद के अलाबला खा लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: नए दौर के खाने और बेवक्त खाने या फिर बाजारी खानों वगैरह से मोटापा, डायबिटीज और तर्ज जिंदगी से मुतालिक बीमारियां बढ़ने का खदशा होता है।
2: बिल्कुल इसी खदशे की बिना पे खलील साहब, शोकु इकू की जरूरत महसूस हुई और जापान में 2005 एक्ट ऑन शोकु इकू बना, ताकि इल्म और महारत को बरूएकार लाकर अच्छी सेहत के लिए मौजूं खाने मुंतखब किए जा सकें।
0: जापान में इसे सिर्फ निसाब में ही नहीं बल्कि मश्क और तजुर्बात के जरिए भी पढ़ाया जाता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह की आगाही की भी अब अशद ज़रूरत है।
2: वैसे वहाँ भी किसी ज़माने में दस्तरखान के आदाब तो दादा दादी ही सिखा देते थे कि खाना गिराना नहीं है, प्लेट में बचाना नहीं है और जो पका है वही खाना है, बाहर का अलावला नहीं खाना। लेकिन वहाँ भी अब पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स का रवाज अब बढ़ रहा है।
0: जी,
2: इसीलिए ये ऐसा तो कानून जहाँ भी होगा बेहतरी लाएगा और सेहत लाएगा। और सामिन, इस सिलसिले में हम चंद अमली तजुर्बात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल सामिन के पैगाम और फिर गाने के बाद एक खासुल खास ऐलान भी आज के प्रोग्राम में हमने शामिल करना है।
1: तो मेरे पास हैं कुछ पैगाम और ये पहला पैगाम ननकाना साहब पाकिस्तान से मेहर अब्दुलसत्तार सेल्फी का है। लिखते हैं, ओरिगामी और कागज़ के हवाले से 19 अप्रैल का दीवान खाना लाजवाब था। 1 करोड़ कागजी कुंजें बनाने वाली बात दिलचस्प लगी। सूफिया जमशेद साहिबा, वसीमा आबिद साहिबा और गुल रहमान भाई को खुसूसी सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेहर अब्दुलसत्तार सल्फी साहब, कहिए कैसे हैं और बकरीद कैसी गुजरी?
2: दोस्तार सेल्फी साहब, आपने 19 अप्रैल का दीवान खाना सुना, उसे सराहा और उस पर पैगाम लिख डाला, हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में नन्नी बच्ची सादा को सासाकी के बारे में बताया गया था, जिसने हिरोशिमा के

0: सरजमीन में क्या बात है सोफिया। सामिन, अब मौसीकी का वक्त हुआ जाता है।
1: आज के गीत का उन्वान है हेल्थ यानी सेहत। इसे पेश करने वाला ग्रुप है ऑरेंज रेंज।
0: जी, ऑरेंज रेंज ओकिनावा का 5 रुकनी रॉक बैंड है जो 2001 में कायम हुआ और 22 फरवरी 2022 को एल्बम ऑरेंज बॉल के एंडी डेब्यू किया
2: और फिर 2003 में सिंगल किरी किरी माई के साथ बड़े लेवल पे डेब्यू किया। वो 2026 में ग्रुप की 25वीं सालगिरह मनाने वाले हैं।
0: मौसीकी के सिंफ को चैलेंज करने वाली इनकी आज़ाद ख्याल मगर इंतहाई नफीस मौसीकी और गैर मामूली मकबूलियत ने तवज्जो हासिल की है और वो मुसलसल मुतअद्दिद क्लासिक हिट्स पेश करते आए हैं।
2: उनका आज का ये गाना हेल्थ सिर्फ परहेजी खुराक के बारे में नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी के बारे में है, चाहे वो अच्छी खुराक की आदत हो या फिर वर्जिश वगैरह की।
1: गाने के बोलों में बिस्यार खोरी या खुद की देखभाल ना करने जैसी गैर सेहतमंद आदत के इदराक सिर्फ जिस्मानी वजन ही नहीं बल्कि गजाइयत और जिस्मानी सरगर्मी के तवाजुन की अहमियत और मजमूई सेहत और आफियत पर तवज्जो मरकूज की गई है
0: और इस पर भी जोर दिया गया है कि कई नाकामियों के बाद भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। सेहतमंद चॉइस का इन्हिसार आपके अपने फैसले हैं जो खुराक की तालीम के तस्वुर से जुड़ा है।
2: और गाने में यह भी है कि अपनी सेहत बेहतर बनाना मस्बत और हौसला अफजा हो सकता है कुछ भी ऐसा जिससे आप लुत्फंदोज हो सकें, खास तौर पर रक्स जैसी वर्जिशी हरकत के जरिए। आज का गीत हेल्थ है जिसमें उस हसीन जलपरी का जिक्र है जो बेचारी मोटी हो गई है। तो आइए सुनते हैं।

0: कहाँ से बनती है
1: भाई। अब तो उराता साहिबा से कहेंगे कि हमें भी बनाकर खिलाएं।
0: अरे प्राइमरी स्कूल पुरानी बात थी, भूल गई होंगी। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि क्योशुक कुकिंग मुकाबला भी होता है जिसके जरिए मेयार की हौसला अफजाई की जाती है। कहती हैं जापान में स्कूल लंच की तैयारी के इलाकाई सतह से लेकर कौमी सतह तक के कई मुकाबले होते हैं और उनके स्कूल के किचन स्टाफ ने एक मौके पर पहली पोजीशन हासिल की थी।
2: और उराता साहिबा को अब भी याद है कि खाने कितने मज़ेदार थे,
0: खूब पेट भर के खाए होंगे ना।
2: और आप सबसे ना सिर्फ तलबा को स्कूल लंच से लुत्फानंदोज़ होने की बल्कि असातज़ा, ग़िज़ाइयत के माहिरीन और किचन स्टाफ को भी अपने बनाए खानों का मियार बेहतर बनाने पर फ़ख्र की तरगीब मिली,
0: इनाम जो मिला था। और सामिन, ये था क्योशुक यानी स्कूल का खाना। इन सब काविशों का मकसद, जापान में ख़ास तौर पर इन काविशों का मकसद आगाही उजागर करना है। और शोको इकुई यानी खुराक की तालीम या आगही इस ख्याल पर मबनी है कि खाना सिर्फ पेट भरना ही नहीं बल्कि रूह को भी सैराब करना है। इसी तनाजुर में बैनुल्सकाफ्ती सूझबूझ के बायस मिलकर खाने वालों को एक दूसरे से वाकिफ होने का और हाइजीन के साथ साथ इखलाकी असूलों की पासदारी का भी सबक मिलता है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि सेहत बख्श जिंदगी है, मुतवाजन गजा है, आप मोटे नहीं होते। अच्छा, आपको पता है आपने क्या खाना है, किस वक्त खाना है, किसके साथ बैठ के खाना है, उस वक्त यही है सब क्योशुक की रूह, माफ कीजिएगा, शोको इकु की रूह।
1: शोको इकु की रूह जी भाई। खुराक के बारे में तालीम का ताल्लुक खुराक के ज़िया से भी है। शायद ताज़ा मसनूआत को तरजीह देने की वजह से खुराक के ज़िया में इजाफा हुआ है। घरों का बचा खाना जो प्रोसेस करके मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस का यह अमल महंगे होने के बायस अमूमन ज़ाया कर दिया जाता है। अब देखिए, 13 जून 2019 में NHK की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 800 मिलियन लोग भूख का शिकार हैं। इनके बारे में सोचकर गज़ा की अहमियत को उजागर करना और भी अहम हो जाता है।
0: जी बिल्कुल दुरुस्त कहा शेराजी साहब। वैसे आपको याद दिलाती चलूं कि हमारे अमले के रुकन यासुमोतोकुं भी तो बता रहे थे कि शिमला मिर्च और टमाटर के बीज उनकी उस्तानी ने उनको दिए
1: ताकि वो उनको बोएं और फिर उनको बड़ा करें और फिर उनको खाएं।
0: ताकि बच्चों को पता चले कितनी मेहनत लगी है एक खाना दस्तरखान तक आने में, बीच से दस्तरखान तक आने में। सामिन, अब घड़ी की सुइयां कहने लग गई हैं कि इजाजत लें, लेकिन इजाजत लेने से पहले एक बार फिर दोहराती चलूं कि जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें का क्विज जापानी जुबानदानी शुरू हो चुका है। आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के तवस्सुत से इसमें शिरकत करें। इसी होम पेज के तवस्सुत से आप हमें ईमेल भी रवाना कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के जरिए ना सिर्फ प्रोग्राम सुन सकते हैं बल्कि हमसे राबता भी कर सकते हैं। हमारा होम पेज है nhk.jp/urdu। अब हमें इजाज़त दीजिए।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब।
0: कामायनी जी, आजकल लोग देखिए रोजमर्रा के जीवन में AI का बहुत उपयोग कर रहे हैं, क्या आप भी करती हैं?
1: हाँ, जब किसी तरह की जानकारी चाहिए होती है तो इंटरनेट पर खुद तरह तरह की वेबसाइट सर्च करने की बजाय आजकल मैं AI से ही पूछ लेती हूँ।
0: हाँ, ये तो ठीक है, इससे समय की बहुत बचत होती है और एक जगह सारी चीजें मिल जाती हैं।
1: जी जी।
0: वैसे जानकारी सर्च करने के अलावा और किस तरह से इस्तेमाल करती हैं?
1: बस ज्यादा नहीं।
0: अच्छा, क्या आपने कभी अपनी निजी जीवन की समस्याएं जैसे लोगों के साथ रिश्तों के बारे में AI से बात की है?

0: ऐसा तो कभी नहीं किया है। क्यों, क्या ऐसी निजी समस्याओं का इलाज भी AI के पास है?
1: नहीं, देखिए अभी देखिए जापान में एक ऐसी घटना घटी जिससे पता चला कि युवा पीढ़ी जो है वो इन चीजों के लिए भी AI से राय लेती है।
0: क्या है ये मामला, जरा विस्तार से बताएं।
1: देखिए हुआ यूँ कि बेटियों को लड़ता देखकर एक पिता ने उन्हें डांटा, तो उल्टा जवाब दिए जाने पर पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बेटी को जरा सा धक्का दे दिया। तो बेटी ने AI से पूछा कि पिता ने हाथ उठाया है तो वो क्या करे। AI ने कहा कि बाल परामर्श केंद्र को फोन करो और साथ में वहाँ का फोन नंबर भी दे दिया।
0: अच्छा, ऐसा भी होता है?
1: हाँ, और बेटी ने फोन किया और परामर्श केंद्र ने पुलिस को फोन कर दिया। और कुछ ही मिनटों में पुलिस घर आ गई और पिता को गिरफ्तार कर लिया।
0: अरे, इसने तो बहुत ही बड़ी घटना का रूप ले लिया।
1: हाँ, वही तो। बाद में बेटी को पछतावा तो हुआ कि AI के कहे अनुसार जो कदम उसने उठाया वो कितनी बड़ी घटना में बदल सकता है।
0: यानी जापान में युवा ऐसी निजी समस्याओं के लिए भी AI से मशवरा कर रहे हैं। काफी हैरान कर देने वाली घटना है।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पहले लगता था ना कि AI बस बड़े बड़े कामों के लिए है, लेकिन अब इसने हमारे जीवन में इस तरह से प्रवेश कर लिया है कि अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही लग रहा है।
0: सही कहा आपने। और बहरहाल अब चलते हैं श्रोताओं के पत्रों की ओर, जो पक्का बिना AI की सहायता से लिखे गए होंगे।
1: जी जी।
0: तो सबसे पहले फेसबुक की टिप्पणियां ले लेते हैं।
1: जरूर।
0: राजेश जापानी ने लिखा है कि NHK वर्ल्ड हिंदी के समाचार जो जापान समय से रात 11:30 बजे प्रसारित होते हैं, वो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होता है, किंतु आप लोग रात 9 बजे बोलते हैं। त्रुटि सुधार की आवश्यकता है। जापान की तरह भारत में मौसम के हिसाब से समय 1 घंटे आगे नहीं बढ़ता।
1: राजेश जी, आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। दरअसल हमारा प्रसारण कई जगहों पर होता है, इंटरनेट तो है ही, साथ में शॉर्टवेव पर भी और अलग अलग समय पर। तो अगर आप देखिए, पहला हमारा जो प्रसारण होता है वो रात 11:30 बजे होता है और वो सैटेलाइट पर होता है, और भारत के अनुसार ये हुआ रात 8 बजे। 9 बजे वाला शॉर्टवेव का प्रसारण है। तो इस प्रकार कई प्रकार के प्रसारण अलग अलग मीडिया पर होते रहते हैं और इंटरनेट पर भी आप साथ साथ सुन सकते हैं।
0: जी, अब दूसरी टिप्पणी है उमेश कुमार शर्मा जी की। लिखते हैं, रेडियो जापान हिंदी सर्विस से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। ये उस समय से है जब आप रेडियो पर 11,840 किलोहर्ट्ज़ पर अपना प्रसारण सुनाते थे। इसके काफ़ी पश्चात ही आप इंटरनेट पर आ गए। अब भी समय मिलने पर आपके कार्यक्रम इस माध्यम से सुनने का प्रयास करता हूँ।
1: उमेश जी, इतने लंबे अरसे से जुड़े रहने के लिए आभार। जब भी आपको मौका मिले जरूर हमारे प्रसारण देखें और सुनें। साथ ही अगर कोई सामग्री पसंद आए तो उसके बारे में अपनी राय भी अवश्य हम तक पहुंचाएं।
0: उमेश जी ने एक समाचार, जापान में जून से बढ़ सकती है 1,000 से अधिक खाद्य पदार्थों की कीमतें, पर अपनी टिप्पणी भेजी है।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध के परिणाम स्वरूप ज्यादातर देशों में विभिन्न सामानों की कीमतों में तेजी हो रही है, जो स्वाभाविक ही है क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप तेल आयात प्रभावित हो गया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है।
1: जी हाँ। और अब देखिए, केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का पत्र है। लिखते हैं, दिनांक 24 मई को चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत आओ पकाएं जापानी खाना में लगभग 1 दशक पूर्व प्रसारित सोयाबीन बर्गर की रेसिपी को आपने जिस रोचक और जीवंत अंदाज में प्रस्तुत किया वो आज भी पूरी तरह ताजगी से भरपूर लगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि अंडे को छोड़कर इसमें प्रयुक्त अधिकांश सामग्री शाकाहारी है, इसलिए हम जैसे शुद्ध शाकाहारी लोग भी इसके स्वाद का आनंद लेने की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि इसे बनाने की प्रक्रिया कुछ श्रम साध्य अवश्य प्रतीत हुई, फिर भी इसकी विशिष्टता और पौष्टिकता इसे आकर्षक बनाती है। अब देखना यह है कि घर में इसकी प्रयोगशाला कब सजती है। यदि धर्मपत्नी की सहमति मिल गई तो इस जापानी व्यंजन को घर पर बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। इस रोचक एवं उपयोगी प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद।
0: सुरेश जी, जापानी भोजन की यही विशेषता है कि सभी व्यंजन बहुत पौष्टिक होते हैं, लेकिन भारत के हिसाब से इसमें शाकाहारी व्यंजन कम है, या हैं तो शायद बनाने की सामग्री वहाँ ना मिल पाए।
1: ये तो है, लेकिन कमाली जी मुझे लगता है कि सोयाबीन बर्गर में अंडे का इस्तेमाल केवल सारी सामग्री को जोड़ने के लिए किया गया है। अगर अंडा नहीं डालना है तो ब्रेड का चूरा मिला सकते हैं, जो सामग्री को एक साथ जोड़ने और टिक्की का आकार देने में कारगर रहेगा। तो सुरेश जी, अगर ऐसा कर लें तो शायद आपकी पत्नी को भी कोई एतराज ना हो।
0: जी, वैसे आपने सही कहा कि बनाने में मेहनत तो लगेगी।
1: हाँ, मेहनत वाला है ये।
0: तो अगली बार कोई आसान सी विधि लेकर आते हैं ताकि आप भी आसानी से हाथ आजमा सकें।
1: जी हाँ।
0: और देखिए, ये अगला पत्र है राम कुमार नीरज जी का।
1: अच्छा जी, बताइए ना, ये क्या फरमा रहे हैं।
0: लिखते हैं, हिंदी सेवा के वेबसाइट पर ऊर्जा सब्सिडी पर 500 अरब येन खर्च कर सकती है सरकार। समाचार पढ़कर पत्र लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाया।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये केवल ऊर्जा सब्सिडी की एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि ये उस मानवीय चिंता को भी सामने लाती है जो किसी भी जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का असर दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ रहा है। ऐसे समय में जापान सरकार का राहत देने के लिए आगे आना एक संवेदनशील और व्यवहारिक कदम माना जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि जापान सरकार $3 अरब से अधिक खर्च कर बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखना चाहती है। इस फैसले के पीछे आम लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश भी दिखाई देती है। बिजली और गैस जैसी मूलभूत जरूरतें महंगी होने पर घर का बजट पूरी तरह प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार द्वारा सब्सिडी देकर राहत पहुंचाने की योजना मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक सब्सिडी देने की योजना ये संकेत देती है कि सरकार हालात की गंभीरता को समझ रही है।
1: राम कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब चौतरफा महंगाई का आलम हो तो इस तरह की सरकारी सहायता से बड़ा सुकून मिलता है।
0: आगे लिखते हैं कि हालांकि इस योजना को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, इतनी बड़ी राशि खर्च करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। भविष्य में इसका असर सरकारी वित्तीय संतुलन पर पड़ सकता है। पूरक बजट की संभावना पर चर्चा ये बताती है कि सरकार को अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है।
1: जी।
0: लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार जनता की राहत को प्राथमिकता देती है तो ये एक लोकतांत्रिक और संवेदनशील शासन व्यवस्था का संकेत माना जाएगा। इस रिपोर्ट को पढ़ते समय एक और महत्वपूर्ण बात महसूस होती है कि दुनिया आज कितनी आपस में जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में पैदा हुआ संकट हजारों किलोमीटर दूर जापान के घरों की बिजली और गैस की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलता और देशों की परस्पर निर्भरता को भी उजागर करता है।
1: राम कुमार जी, आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है, और यहाँ पर मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सरकार का काम ही जनता के लिए काम करना है।
0: जी,
1: इसीलिए उन्हें चुना गया है। देश की बागडोर संभालने का मतलब देश को हर आंधी तूफान से बचाकर किनारे पर ले जाना है, और ऐसे प्रयास हर देश में होने चाहिए, तभी सबका जीवन सुधर सकता है ना?
0: जी जी जी, सही कहा आपने। और देखिए वायला जी, अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। तो बढ़ाते हैं अब पत्रों का सिलसिला।
1: बिल्कुल, नेकी और पूछ। तो देखिए, ये अगला पत्र है SB शर्मा जी का।
0: क्या लिखते हैं?
1: लिखते हैं, 24 मई का चेरी के देश से कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। आपके प्रसारण के माध्यम से रेडियो जापान हिंदी के श्रोताओं के विचार सुनने को मिले। कार्यक्रम के अगले भाग आओ पकाए जापानी खाना में सोयाबीन बर्गर बनाने की विधि विस्तार पूर्वक सुनी, पर पूरी विधि सुनने में ऐसा लगा कि इस रेसिपी का नाम सोयाबीन बर्गर ना होकर अंडा बर्गर होना चाहिए।

0: अच्छा, क्योंकि इस रेसिपी में सोयाबीन से ज्यादा तो अंडा लगाया गया है, पर जो भी हो बर्गर स्वादिष्ट बना होगा।
1: शर्मा जी की टिप्पणी भी लाजवाब रही
0: जी,
1: इस पर तो कोई जवाब ही नहीं सोच रहा है। कार्यक्रम सुनने के लिए शुक्रिया।
0: जी हाँ, और कमाली जी, अभी देखिए हमने उमेश जी की फेसबुक की टिप्पणियां ली थी और उसमें से एक और है जिसमें इन्होंने लिखा है कि शायद आप मुझे भूल गई हैं, किंतु मैं नारनौल हरियाणा में आपको सदा याद करता हूँ, क्योंकि मैं रेडियो जापान को रेडियो पर सुनता था, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपने कार्यक्रम सुनाने लगे तो आपसे संपर्क नहीं कर पाया।
1: अच्छा हाँ, एक दिन सुरेश जी ने पूछा था ना कि क्या ये वही उमेश जी हैं हरियाणा वाले।
0: हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने कहा था ना नारनौल हरियाणा के हैं उमेश जी। जी जी जी, मुझे याद आया। हाँ,
1: तो आज पुष्टि हो ही गई कि ये वही उमेश जी हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल वही उमेश जी हैं। और ये आगे लिखते हैं कि जापानी व्यंजन बनाने की रेसिपी आपने जो शुरू की उनका स्वाद लेने का मन करता रहा है, लेकिन चेरी के देश से कार्यक्रम में मिवाको कोएजुका जी को सुनने का जो आनंद मिलता था वो काफी अच्छा लगता था। एक जापानी होने के बावजूद उनका श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला अंदाज मुझे अब तक याद है। आपके द्वारा समय समय पर भेजे गए कार्ड्स मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है, और इनके द्वारा रेडियो जापान हिंदी सर्विस की यादें ताजा होती हैं।
1: अरे वाह, मिवाको जी की तो बात ही अलग थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनका अंदाज, उनकी शैली बेजोड़ थी। हम भी उन्हें याद करते हैं
0: जी,
1: बहुत ही प्यारी व्यक्तित्व की धनी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज भी पसंद आ रहा होगा।
0: हाँ, ये भी आप अगली बार हमें बताइए
1: जी,
0: कि हमारा अंदाज पसंद आ रहा है कि नहीं। और देखिए सोयाबीन बर्गर के बारे में तो देखिए इन्होंने भी टिप्पणी की है, और अभी हमने पहले कहा था कि जापानी भोजन वाकई बहुत ही पौष्टिक होता है। हर मौसम की अलग अलग खाद्य सामग्री से इस तरह से व्यंजन बनाए जाते हैं कि मौसम की अनुभूति हो।
1: वायला जी, आपने अच्छा याद दिलाया। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए वरदान हैं।
0: जी हाँ, ये तो सच है, और कहते भी है ना कि हर बीमारी का इलाज प्रकृति में ही होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है।
1: जी, जी, जी।
0: और भारत में तो आपको पता ही है कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से हम बचपन से अपनी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात पाते आए हैं। आप किसी भी भारतीय से बात कर लीजिए और अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी समस्या बता दी तो बिना समय गाए फौरन वो आपको कोई प्राकृतिक या कोई घरेलू नुस्खा आपको बता देंगे, हल बता देंगे उसका।
1: सही कहा आपने, पहले के जमाने में लोग इसके बारे में कितना जानते थे, लेकिन आजकल ये सब लुप्त होता जा रहा है। फिर भी कई लोग प्रकृति के वरदानों के हिसाब से चल रहे हैं।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये बताइए कि अचानक क्या हो गया आपको कि आप इसके बारे में बात करने लगी? कोई समस्या है तो बताइए, फिर उसका निजात भी ढूंढ लिया जाए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, दरअसल कुछ दिन पहले मैं हमारी वेबसाइट पर प्रकृति का वरदान श्रृंखला की कुछ कड़ियां देख रही थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, देख रही थी, जिनमें जापान की उन वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के बारे में बताया जा रहा था जिनका सेवन सदियों से होता आया है और आज भी हो रहा है।
0: अच्छा, जापान में भी इस तरह का है कुछ क्या?
1: हाँ हाँ, एक कड़ी है वसंत जड़ी बूटियों का ज्ञान। उसमें आप जान सकते हैं कि किस तरह सदियों पहले एक कारोबारी ने औषधीय जड़ी बूटियों वाले उद्यान की शुरुआत की।
0: अच्छा,
1: उनका उद्यान समझ लीजिए ऐसी वनस्पतियों का खजाना है।
0: अरे वाह, तो ये तो भाई देखने लायक वीडियो है, मैं जरूर देखूंगी।
1: हाँ, इस कार्यक्रम में जान सकते हैं उन लोगों के बारे में इन जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अपने पूर्वजों की दिखाई राह का अनुसरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसमें रुचि हो तो जरूर देखें।
0: जी हाँ, और मैं भी देखूंगी और मैं भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वो राज हैं जापानी वनस्पतियों के जो हमें भी जानने चाहिए।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो कमाईनी जी, आज क्यों ना कार्यक्रम के अंत में एक गीत सुन लिया जाए। तो ये गीत है डांस हॉल, और इसे गाया है मिसेस ग्रीन एप्पल ग्रुप ने, और ये जो ग्रुप है इस समय जापान में काफी लोकप्रिय है।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, कहिए कैसे हैं आप?
1: उम्मीद है सब मज़े में होंगे। ईद उल अज़हा थी, अगरचे अब तकरीबन 10-12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सब सामईन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक और फरीज़ हज अदा करने वाले तमाम असहाब को भी दिली मुबारकबाद।
0: बकरीद कुर्बानी का गोश्त बनाने, खाने और बांटने का त्यौहार है। वैसे तो दुनिया के किसी खत्ते में कहीं भी कोई भी रिवायती त्यौहार हो, वो रिवायती खानों के बगैर नामुकम्मल रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर बकरीद का तसव्वुर ही खुर्दनोश से जुड़ा है।
2: सूफिया, जापानी सकाफत के खाने पकाने से वाबस्ता एक पहलू का जिक्र करूँ?
1: खाने पीने के जिक्र से ही तखयल में जायकेदार खाने आने लगे।
0: मुँह में पानी तो नहीं आया ना, क्योंकि वसीमा कोई डिश तो लाई नहीं है, सिर्फ जिक्र पर ही तरखा रही हैं। चलिए इस खास पहलू का जिक्र कर ही डालिए आप।
2: अरे नहीं, अब लाऊंगी, आइंदा जरूर लाऊंगी। वैसे

हो सकता है कुछ भी ऐसा जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, ख़ास तौर पर रक्स जैसी वर्जिशी हरकत के ज़रिए। आज का गीत हेल्थ है, जिसमें उस हसीन जलपरी का जिक्र है जो बेचारी मोटी हो गई है। तो आइए सुनते हैं।